0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: समाचार, चेतना, मनोरंजन र कला, यो हो सामुदायिक रेडियो चलचला चलचला चलचला।
2: यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 10 बज्यो।
3: यस टाइम चेकका प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्रणाली तिलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।